आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पीछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि

0: श्री रामलला भगवान की, श्री आनंदकंद भगवान की, श्री कौशल्यानंद भगवान की
1: जय,
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
1: जय,
0: श्री चारो भैयन की
1: जय,
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय,
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय,
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय,
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय,
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय,
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय,
0: जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय,
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय,
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय,
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय,
0: गो माता की
1: जय,
0: भारत माता की
1: जय,
0: रात श्रृंगार आरती की जय, जय श्री सीता राम।

विप्रधेनुसुरसन्दहिता लीनमनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु श्रीमाया गुण गोपार श्रियावर रामचंद्र जी की जय। श्री अयोध्या राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलराव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनं स्वधामदं निकामस्याम प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादि दोषमोचनं प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभव निषंग चाप सायकं दरं त्रिलोक दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारी वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नींदिरापतिम सुखाकरम सतम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुज।

तदीय भक्ति संयुता। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसयताहिने नमो वयं वैश्वराय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम।

वर्जनम भवबीजानाम मर्जनम सुखदम पदाम तर्जनम यम दूतानाम राम राम एति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेद तरे अवधूत राम नाम की गर्जना भाज्या यम दूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः।

श्री गोविंद गीता अध्याय दो सांख्य योग। अश्रुपूरित नेत्रों से शोकमग्न अर्जुन अतिशय व्याकुल एवं व्यथित है। इन विषम परिस्थितियों में वह श्री कृष्ण का शरणागत शिष्य होना स्वीकार करता है तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी एवं धर्मनिष्ठ उपदेश हेतु विनती करता है। श्री कृष्ण उस ज्ञानामृत की वर्षा करते हैं जो संपूर्ण गीता के सार स्वरूप 72 सूत्र

सेनाओं के मध्य युद्ध विमुख वह शोक से स्तब्ध अर्जुन के सभी तर्कों को मात्र मोहजन्य बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवित मृत का शोक करना महज अज्ञानता है। मधुसूदन कहते हैं,

श्री भगवान आत्मा एवं देह के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि भौतिक देह असत है, नाशवान है, परंतु आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, शाश्वत है। यह भौतिक देह तो वस्त्र की भांति है, जिन्हें पुराना होने पर बदल दिया जाता है। ऋषिकेश कहते हैं।

हे अर्जुन, युद्ध से विमुख होना अपने स्वधर्म का त्याग करना है। इस अज्ञानता पूर्ण कृत्य से तुम मात्र अपयश एवं उपहास के पात्र बनोगे। अतः युद्ध के लिए तैयार हो।

श्री भगवान अपने शरणागत शिष्य को स्थिर बुद्धि के साथ फल आसक्ति से विहीन निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। जनार्दन कहते हैं।

कुरुनंदन अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, समाधिस्थ की क्या भाषा है? प्रत्युत्तर में मधुसूदन कहते हैं कि काम, इच्छा, राग, भय व क्रोध से मुक्त, शुभ अशुभ, सुख दुख व हानि लाभ में एक समान रहने वाला आत्मसंयमी योगी ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय लीन पुरुषों में क्रमशः काम, क्रोध, मोह एवं स्मृति भ्रम उपजते हैं, जिससे बुद्धि नाश एवं अधोपतन हो जाता है। श्री गोविंद के शब्दों में

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: पतनस्यसुते देवी यमुने त्वं महानदी ऋषि सिद्धि सुरैर्जुष्टे गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते।
1: मैं उपत्यका यमुना यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री में आपका स्वागत करती हूँ। ये बाहें फैलाकर भारत भूमि की रक्षा करता पर्वतराज हिमालय और इसके विशाल वक्ष पर मोतियों की लड़ियों की तरह झूलती नदियां, तेज दूत की सिधार गंगा की और दुबली पतली दुधारा यमुना की। यमुना जो पहाड़ों में पहले जन्म लेने के नाते गंगा की बड़ी बहन है। तो यहाँ की कहानी सुनोगे? उत्तर दिशा में हिमालय की कोख से यमुना के जन्म की, यमुनोत्री की।
2: यम की बहन यमी सूर्य और संज्ञा की पुत्री थी। यमी के जन्म से पहले ही संज्ञा के किसी अनाचरण पर सूर्य ने उसे श्राप दिया था, तेरी पुत्री धरती पर एक उच्छृंखल नदी बनकर जन्म लेगी।
1: यमी यमुना बनी, लेकिन सामान्य नहीं रही। यमुना की गाथा द्वापर से भविष्य तक संस्कृति, इतिहास और संस्कार का पर्याय बन गई। लेकिन जो भी गंगोत्री और हिमालय में स्थित अन्य धामों की यात्रा कर यमुनोत्री पहुंचता है, उसे पहली बार में

0: निराशा ही लगती है। सुप्रसिद्ध लेखक श्री विष्णु प्रभाकर को भी कुछ ऐसा ही लगा था, किंतु फिर
1: हिमालय के चार प्रसिद्ध तीर्थ हैं, यमुनोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों में गए हूँ। यमुनोत्री में जब पहुंचा था, भयानक मार्ग को पार करता हुआ, तो मुझे बहुत निराशा हुई थी। तो ये सूर्य की बेटी है और यम की जो भगनी है, वहाँ मानसल सौंदर्य की आशा करना व्यर्थ होता है। यमराज ने अपनी बहन की रक्षा के लिए चारों तरफ पहाड़ खड़े किए हैं, वो वैसे ही हैं जैसे यमदूत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, तो घाटियों में देखा कि पत्थरों के बीच में से कल कल छल छल की आवाज आ रही है और बीच में से हल्का हल्का पानी उछलता उछलता चला जा रहा है। तो उसी की तरफ देखते देखते मेरी दृष्टि फिर उधर गई, ऊपर दूर, पहाड़ बहुत ऊंचा है, बंदर पूछ उसका नाम है, उसकी एक कहानी है। तो उस बंदर पूछ पर्वत से यमुना का उद्गम होता है। तो मैंने देखा कि वहां से बहुत ऊपर देखने पर दो धाराएं हैं जो फुहार की तरह से उड़ रही हैं। बड़ा सुंदर लगता है वो फुहार उड़ना। एक का नाम है कालिंदी, एक का नाम यमुना। नीचे आकर वो दोनों की दोनों मिल जाती हैं और पत्थरों के बीच में से होती भी चलती हैं। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि यमुना का कोई बहुत बड़ा वैभव है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही गरुड़ गंगा अथाह जलराशि लेकर के उसमें समा जाती है। तब जो है यमुना का असली रूप प्रकट होता है। श्याम वर्ण है यमुना का, वहाँ श्याम जल है, और फिर वो पूरे उद्दाम वेग से आगे चलती चलती चलती चली जाती है।
0: यमुना टिहरी गढ़वाल में 6,330 मीटर ऊंचाई पर प्रकट होती है। कलिंद पर्वत से आगे चलकर कालिंदी में ऋषिगंगा, उमा, हनुमान गंगा आदि सात धाराएं आ मिलती हैं। 11 झरने इसे बंदरपूंछ से विदा देते हैं। कलसी में टौंस नदी इससे गले मिलती है, जिसमें यमुना से भी अधिक पानी है। और तब यमुना नाचती, बल खाती, छींटे उड़ाती, झरनों में झरती, घाटियों, चट्टानों, गहरी खाइयों और पहाड़ों में रास्ता बनाती, तेजी से मैदानों की ओर चल निकलती है। धर्माधिकारी डॉक्टर विद्याधर यमुना के इस वेग की शास्त्रोक्त व्याख्या करते हैं।
2: यमुना के स्वरूप के विषय में सबसे प्राचीन सामग्री अर्थात ऋग्वेद संहिता के एक मंत्र को लेते हैं, जिसकी व्याख्या में यास्क ने, जो कि ईसा पूर्व 6 शताब्दी में हुए हैं, बहुत अच्छा स्वरूप हमारे सामने रखा है। यमुना के संबंध में इसमें प्रयुवति गच्छति तिवा, ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं। अनेक नदियों से यह मिलती रही, फिर भी अपना अस्तित्व इसने कभी भी नहीं खोया। इसको देख करके युवती के दर्शन से जिस प्रकार आह्लाद या प्रसन्नता या स्फूर्ति उत्पन्न होती है, इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते थे, ऐसा यास्क के कथन का सारांश निकाला जा सकता है।
0: शिवालिक की पहाड़ियों में घूमती विचरती यमुना 130 किलोमीटर लंबी पर्वतीय यात्रा के बाद फैजाबाद में मैदानों में प्रवेश करती है। खनिज, औषधियों और उपजाऊ मिट्टी से भरा मंगल घट अब यमुना खेतों में उलट देती है। इस जल की बाहें दूर दूर तक फैलाने के लिए इससे दो महत्वपूर्ण नहरें निकाली गई हैं। पश्चिमी यमुना नहर, जो अंबाला, करनाल, रोहतक और हिसार आदि जिलों को सींचती है। इस नहर का काम 500 वर्ष पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने आरंभ करवाया था। तब से आज तक ये कई बार बंद होती, खुलती, दूर तक फैले खेतों में हरा सोना सींच रही है।

ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के विस्तृत इलाकों को सींचती है। पानीपत के युद्ध देखती, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती यमुना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शस्त्रों की झनकार और पार्थसारथी कृष्ण का गीता का उपदेश अपने अंदर समोती है। इसके दूसरे तट से कुछ ही दूर है मेरठ, जहां 1857 में मंगल पांडे ने देश की आजादी का पहला बिगुल फूंका था।

0: और यही सब देखती समझती रीछती खींचती यमुना आ पहुंची है सात बार उजड़ने और बसने वाली दिल्ली में। यहां अब मैं उपत्यका आपसे विदा लेती हूं।
1: मैं रोशन हूं। दिल्ली से मथुरा तक की यमुना यात्रा में मैं आपके साथ चलूंगा। कभी इंद्रप्रस्थ कहलाने वाली दिल्ली का इतिहास शक्ति की होड़ का इतिहास है। इसी के किनारे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासु की रचना की थी और इसी यमुना नदी की छाती पर पृथ्वीराज संयोगिता के फूलों लदे रंगीन बजरे तैरा करते थे। उसी पृथ्वीराज के चढ़ते सूर्य को खून में नहलाकर जब मोहम्मद गोरी ने अपने 16 पराजयों का बदला दिल्ली से लिया तो यमुना उसके घावों पर शीतल जल छिड़कने के अलावा कुछ भी न कर पाई। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश सबका इतिहास बांटती रही यमुना इब्न बतूता के साथ कि आप पहुंचा तैमूरलंग। गांव कूचे खेत खलिहान महल झोपड़े उजाड़ता दिल्ली के खून से यमुना का पानी लाल करता।

0: लेकिन शेरशाह के बाद दिल्ली का भाग्य फिर जगा। यमुना फिर से राग रंग में नहा गई। शाहजहां यमुना का मतवाला हो गया। लाल किले के दीवाने खास से लेकर पूरे चांदनी चौक में यमुना नहर बहने लगी। बहादुर शाह जफर और अनेक दिग्गज साहित्यकारों ने एक नई तहजीब, एक नई भाषा, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की नई इबारत गढ़ी। और बहुत कुछ होता रहा है यमुना के किनारे दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर शमीम हनफी के शब्दों में,
1: यमुना का जिक्र उर्दू में यानी गद्य और पद्य दोनों में कई लेवल्स पर आया है, कई स्तरों पर आया है। एक तो जैसे यमुना एक नदी के तौर पर, एक फिजिकल फिनोमेना बिल्कुल, ये कि जो एक दृश्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये दूसरा है यमुना एक सिंबल के तौर पर, सिंबल ऑफ लव, ऑफ ब्यूटी, और ये मतलब टाइम को एक तरीके से एक टाइम में सफ़र करती हुई एक सच्चाई, उसके सिंबल के तौर पर। तीसरा एक यमुना एक आर्किटाइपल इमेज के तौर पर, और चौथा है कृष्ण भक्ति के एक इशारे के तौर पर। तो इस तरह के कई लेवल्स मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो समझिए कि जब से उर्दू शायरी की तारीख शुरू होती है अब तक आप देखें तो ये सिलसिला जारी है।
0: और फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने 8वीं दिल्ली बसाई, नई दिल्ली। अंग्रेजों की दिल्ली के प्रमाण हमें कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली अभिलेखागार के अनेक चित्रों में मिलते हैं। आजादी की लड़ाई में दिल्ली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी वस्त्रों की होली से लेकर शहीद हो जाने तक का इतिहास रचा। यमुना ने फिर देखा सदियों की गुलामी का सूर्यास्त और स्वराज का सूर्योदय।
2: आज एक शुभ और मुबारक दिन है

0: स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया, वो चीजें हमारे कब्जे में आई, दिल हमारा खुश होता है, एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है।
1: और इसी दिल्ली में एक भारतीय ने ही बापू के प्राण हर लिए थे। यमुना के किनारे ही बनी है महापुरुषों की समाधियां, जहां देश का इतिहास सो रहा है। अगर हम कहें कि आधुनिक युग में नवी दिल्ली बस रही है तो अतिशयोक्ति न होगी। अभी तक यह शहर मुख्यतः यमुना के पश्चिमी तट पर बसा हुआ था, अब कई पुलों से जुड़ा उसका पूर्वी किनारा ऊंचे नीचे मकानों के समूहों से पटता जा रहा है। आजकल इसके दोनों किनारों को जोड़ता 16 ट्रैक वाला देश का सबसे बड़ा पुल निर्मित हो रहा है और पुलों की भी योजना है। आबादी के विस्फोट के साथ साथ यमुना पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ओखला से वजीराबाद तक अनेक नाले प्रतिदिन 55 करोड़ लीटर गंदगी उलीच रहे हैं। यमुना में पानी की कमी होते देख छोटी बहन गंगा को दिल्ली लाया गया। तेजी से बढ़ती बहुसंख्यक प्यास का अंत कहां जाकर होगा? क्या गंगा यमुना मिलकर भी जरूरत भर स्वच्छ पीने योग्य पानी दे पाएंगी?

0: मैं श्यामा हूँ, मथुरा की रहने वाली। यमुना नदी से भेंट करने मैं शहर से दूर कछारों पर निकल आई हूँ। वो आ रही है यमुना, हिंडन नदी का जल साथ लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती। देख रही हूँ कि मैया किस तरह जनजीवन को पाल रही है। काछी, कुमार, मल्लाह, धोबी, रेती ढोने वाले सभी अपने पेट पालन के लिए यमुना पर निर्भर हैं।
1: अच्छा, ये यमुना जी से आप लोग ये कपड़े धो के कितनी कमाई कर लेते होगे महीने में एक परिवार?
2: मतलब है साहब, कमाई तो इसमें कुछ नहीं है, मेहनत ज्यादा। हमको जो 20 रुपए रोज भी नहीं पड़ते, 3 दिन यहाँ पर लगे रहते हम, माए बाल बच्चों समेत।
1: भैया आप तो ये नाव चलाते हैं, आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम भूलाल।
1: अच्छा, ये यमुना मैया तो आपका पेट पाल रही हैं, परिवार का पेट पाल रही हैं, तो कैसे आप, आपको क्या लगता है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं?
3: संतुष्ट होने वाला तो ये ऐसा संतुष्ट तो होते हैं हम लोग, अगर यमुना में पानी पूरी तौर से साफ तरीके से अगर पानी रहे तो यात्री परदेशी आए तो हमारा धंधा रोजगार भी थोड़ा चले और उसके चलने के साथ साथ हमारे बच्चों का भी पालन हो।
1: तकरीबन एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी?
3: कमाई का तो सरकार ऐसा है कि यमुना में अगर साफ सफेद अच्छी तरीके से बनी रहे तो हम लोगों का पेट पालन हो सकता है।
0: पूरे देश में नदियों के अद्भुत चित्र व मूर्तियां मिलती हैं। मथुरा राजकीय संग्रहालय की निदेशक श्रीमती पुष्पलता ठकुरेल यमुना की कला छवियों का वर्णन इन शब्दों में करती हैं।
4: हमारे यहाँ नदियों को पवित्र देवियों के रूप में प्रारंभ से ही पूजा जाता है। यद्यपि कला में इन देवियों का अंकन बहुत बाद में हुआ है और मथुरा कला में यमुना का अंकन गुप्तकाल एवं विशेषकर मध्यकाल में हुआ है। एक पैनल हमारे संग्रहालय में ऐसा है जिसे कृष्ण जीवन के कथानक से हम जोड़ते हैं। उसमें यमुना को मात्र नदी के रूप में प्रदर्शित किया है, यमुना को देवी के रूप में मध्यकालीन द्वार शाखाओं पर दोनों किनारों पर एक ओर गंगा और दूसरी ओर यमुना का अंकन किया जाता था। इन पर यमुना को स्त्री रूप में मानवीय

अलंकरण रूप देते हुए पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित ऊपर से यानी कि सिर से लेकर पैरों तक वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित दिखाया है। जिस प्रकार कलाकार गंगा को प्रदर्शित करने के लिए मगर का अंकन करता है, उसी प्रकार यमुना का वाहन कच्छप दर्शाया गया है। कभी कभी यमुना को कमल नाल लिए भी दिखाया है। यमुना की मध्यकालीन कुछ प्रतिमाएं हमें महावन के जैन 84 मंदिर से मिली हैं। ऐसी कोई प्रतिमा मैंने अभी नहीं देखी जहां इन देवियों को बैठे दर्शाया गया है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, पूरी की पूरी ब्रजभूमि यमुना का स्पर्श पाकर आम्र कुंजों, करील की झाड़ियों, कृष्णचूड़ा, जवाकुसुम, चंपा और कदम्ब के झुरमुटों की रम्य स्थली बन गई है। यहाँ आकर कृष्ण, राधा और यमुना एकाकार हो उठते हैं। द्वापर की स्मृतियां कलियुग का द्वार खटखटाने लगती हैं। इस पुरातन तीर्थ भूमि के पास ही स्थापित किया गया है आधुनिक विकास का तीर्थ तेल शोधक कारखाना। यमुना के किनारे उद्योग धंधे पनप रहे हैं। अब मैं श्यामा सूरकुटी में यमुना मैया का एक बार फिर स्वागत करने और यहाँ की महिमामयी धरती से आपका परिचय कराने के लिए प्रस्तुत हूँ। सूरकुटी से आगरा कुल 22 किलोमीटर ही तो है। यहाँ भक्त कवि सूरदास ने कुटी बनाई थी और मान्यता है कि सूर सागर के अधिकांश पद यही यमुना तट पर रचे गए। यहाँ पर सूर स्मारक संस्थान ने एक अंध विद्यालय और विद्यार्थी निवास की व्यवस्था की हुई है।

0: यमुना जी के किनारे किनारे बढ़ती मैं सिकंदरा और अमर सिंह राठौर का अश्व स्मारक देखती 450 साल पुराने आगरा शहर के किले पर आ पहुंची हूँ। यहाँ ग्वालियर के राजा ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यहाँ की लाल दीवारों में हुमायूं का परपोता शाहजहां वर्षों अपने बेटे औरंगजेब की कैद में रहा। यहीं से वो देखा करता था यमुना पार अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल का अमर स्मारक ताजमहल। मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी क्यों बनाया? पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री शंकर नाथ कहते हैं,
1: अपने साम्राज्य को बढ़ाने, उसकी सुचारू रूप से देखभाल करने, ट्रेड अथवा व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के दृष्टिकोण से उन्हें यह स्थल ज्यादा उपयुक्त लगा। उनको आगरा में जमुना जैसी एक ऐसी नदी मिल गई जिससे वो यहाँ बैठ करके सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि यहाँ से बंगाल तक आवश्यकता पड़ने पर नौकाओं के द्वारा मुगल सेनाएं यहाँ से बंगाल तक धावा मारती थी अथवा यहाँ से उत्तर की तरफ देहरादून के इलाके तक जाती थी।
0: मथुरा से आगरा के बीच की भूमि अनेक धर्मों और संस्कृतियों के मिलन की भूमि रही है। डॉक्टर बृजवल्लभ मिश्र।
2: ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन साहित्य को देखने से लगता है कि यमुना उस समय इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये था कि इसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था और फिर यहाँ मथुरा नाम बनने से पूर्व ही जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का और वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा केंद्र स्थापित हो गया। जैन धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने और बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने यहाँ बने। यहाँ से मूर्तियां बन बन के बाहर जाती।

0: यमुना यात्रा में आगरा तक आई और उससे आगे की यात्रा में मैं आपके साथ हूं। मेरा नाम तीर्थराज है। प्रयागराज संगम तक पहुंचते पहुंचते अनेक नदियां यमुना में आकर मिल जाती हैं। बेनगंगा, सेंगा, चंबल, जो अपने साथ क्षिप्रा, काली सिंध और बनास की जलांजलि लाई थी। इटावा के पास जयचंद और शहाबुद्दीन गोरी की मुठभेड़, कालपी के पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और तांतिया टोपे का साहस, सब यमुना ने देखे। कालपी से आगे बेतवा और केन नदियां उसमें आ मिली हैं। यमुना का वेग बढ़ गया है, वह गंगा से मिलने को आतुर है। लेकिन एक छोटा सा गांव कोसम, जो कभी वैभवशाली कौशाम्बी था, बस अब खंडहर बचे हैं और बची है अशोक की एक अकेली लाट, यमुना की यादों की साक्षी। अब आ गई यमुना राजापुर में। भक्त शिरोमणि तुलसीदास के रामचरित मानस की रचना भूमि, इतिहास जैसे अतीत है, उसी तरह यमुना की 1306 किलोमीटर की यात्रा भी अतीत होने जा रही है। बड़ी बहन यमुना अपना अथाह श्याम जल गौर वर्णा गंगा को सौंप कर विलीन हो रही है। यमुना, गंगा और गुप्त सरस्वती, तीनों का मिलन शतकूप बीच तीर्थ बन गया है। श्री केशव चंद्र वर्मा,
1: युवराज साहब ऐसी बातें कहते थे कि जो सूत्र के रूप में होती थी, उन्होंने एक बार ये कहा था कि गंगा यमुना की जो द्वाबे की संस्कृति है, सच पूछो तो यही भारतीय संस्कृति की मूल है। इसी के आधार पर हम हमेशा भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। जो कुछ भी इसके अलावा इस देश में घटित हुआ है, वो इसी से कहीं न कहीं प्रभावित है। उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहीं कहा है, यमुना का वर्णन करते हुए, कि वह रस की नदी है। कृष्ण और राधा का जो भारतीय प्रतीक है, वो यमुना को ही समेट कर चलता है। यमुना के किनारे किनारे प्रयाग तक बहुत कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें उस संस्कृति की अनेक छवियां जगह जगह अंकित हैं।
2: मैं कलिंग सुता हिमालय की गोद से निकलकर यहां मां पहुंची हूं। थम गई है जैसे मेरी यात्रा, रुकी हुई हूँ गहरी धीर चुपचाप और हर हराती हुई आ रही है उज्ज्वल वर्णी गंगा बहन। हम दोनों मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और नीचे नीचे बह रही है बहन सरस्वती। हम तीनों का ये मिलन कैसे पवित्र न होता, कैसे न बन जाता ये स्थल तीर्थराज प्रयाग।
0: संगम के इस पवित्र मिलन को साक्षी बना माता कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया था, अचल हो अहिवात तुम्हारा जब लगे गंग जमुन की धारा। शाश्वतता के इस प्रमाण को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, उनकी चर्चा श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ने की, जो गंगा कार्य योजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक हैं।
3: यमुना निर्मलीकरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना को सहायता देने के लिए जापान सरकार आगे आई है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हमें आशा है कि शीघ्र

मथुरा, वृंदावन, आगरा और हरियाणा एवं दिल्ली में भी इस दिशा में कुछ काम होगा। जहाँ तक इलाहाबाद का सवाल है, मैं यह कहूँगा कि जैसे नदियाँ समाज की शिराएं हैं, उसी प्रकार से सीवर शहर की धमनियाँ हैं।

0: और हमारी नदियां भी स्वच्छ होगी।
1: इमे गंगे यमुने सरस्वती सुतुदृष्टो मम सचता परुष्या ऐसे कन्याम रुद्रभे वितस्तया की।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा के पिछले अंक में आपने सुना कि दैत्य माता दिति के कहने पर तारक पुत्रों तारकाक्ष विद्युन्माली और कमलाक्ष ने शुक्राचार्य को पुनः दैत्य गुरु बना लिया। शुक्राचार्य ने उनसे ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें तीन अभेद्य नगर प्रदान किए। तीनों दैत्यों ने एक बार फिर शिव के ही हाथों मृत्यु मांगी, परंतु अमरत्व प्राप्त करने के लिए वे तीनों शिव आराधना में जुट गए। प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने तीनों दैत्य भ्राताओं का वध करना अस्वीकार कर दिया। उनसे भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, कितने आश्चर्य की बात है, सदा धर्म का नाश करने वाले दैत्यों ने धर्म को ही अपना रक्षा कवच बना लिया।
2: विप्रवर शौनक जी, जीवन का मोह ही कुछ ऐसा होता है। व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रकृति त्याग कुछ भी करने को बाध्य हो जाता है।
1: परंतु सूत जी, जैसा ब्रह्मा जी सदा कहते आए हैं कि जो जन्म लेता है उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही होता है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे दैत्यों को धर्म की ढाल त्यागनी पड़ी?
2: शौनक जी, भगवान शिव शंकर देवताओं से ये कहकर अंतर्धान हो गए कि वे भगवान विष्णु के समक्ष जाएं, वे ही कोई उपाय बताएंगे।
1: तो क्या देवता विष्णु हरे के द्वारे गए महाभाग?
2: हाँ शौनक जी, स्वयं ब्रह्मा उनकी अगुवाई कर रहे थे।
3: नारायण नारायण नारायण, ये तो वास्तव में बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है विधात। दैत्य इसी प्रकार धर्माचरण करते रहे तो वे शीघ्र ही सबके पूज्य बन जाएंगे। देवताओं और दैत्यों में क्या अंतर रह जाएगा?
4: आपका कथन सत्य है नारद मुनि। हो सकता है मानव हमारी पूजा ही छोड़ दे।
5: वायुदेव, इस समय प्रश्न पूज्य अपूज्य का नहीं है, प्रश्न है दैत्य शक्ति का, जो उनकी धर्म परायणता के कारण बढ़ती ही जा रही है। शुक्राचार्य अवश्य ही हम पर हंस रहे होंगे। तारक पुत्रों ने वरदान ही ऐसा मांगा है जिसका तोड़ असंभव प्रतीत हो रहा है।
3: नारायण नारायण,
6: परम पिता, आपके मुख से असंभव शब्द सुन मन बड़ा क्लांत हुआ। आप तीनों प्रभु तो सर्वशक्तिमान हैं।
7: मुने नारद, हमारी शक्तियां अधर्म के नाश के लिए हैं, ना के धर्म के विनाश के लिए।
3: नारायण नारायण,
6: श्री विष्णु हरे, आपको स्वयं अपने हाथ मैले करने की क्या आवश्यकता है?
7: हम आपका तात्पर्य नहीं समझे नारद।

0: ऐसा हो सकता है महाप्रभु? आप अंतर्यामी अपने भक्त का तात्पर्य न समझ पाए? त्रिपुर में धर्म विनाशक की उत्पत्ति तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है मुने नारद, आपकी ये इच्छा हम अभी पूर्ण किए देते हैं।
1: नारायण नारायण,
0: त्रिपुर में अधर्म अथवा नास्तिक शास्त्र का प्रचार ही तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की शक्ति को क्षीण करेगा।

0: अरे भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से एक भयानक पुरुष उत्पन्न किया है वायुदेव।
1: हाँ इंद्रदेव, मुंडा हुआ सिर, मलिन वस्त्र और एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे में झाड़ू।
0: मुनि रूप धारण किए इस व्यक्ति के मुख से धर्म धन की वाणी फूट रही है।
1: हाँ
2: हे भगवान विष्णु, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है?
1: तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न, अतः मेरे ही स्वरूप हो। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरण होगा।
2: प्रभो, मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य बताएं।
1: अहिरण, तुम्हें दैत्यों और मानवों के बीच नास्तिक शास्त्र का प्रचार करना है।
2: इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
1: तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र की रचना करो जो वर्णाश्रम धर्म में वर्जित हो। इसमें अभ्रंश शब्द तो हो ही, कर्म से संबंधित विवाद भी हो। तुम्हें सबके मन में ये धारणा बैठानी है कि स्वर्ग और नर्क यही हैं और कहीं नहीं।
2: मुझे ऐसा प्रचार कहाँ करना होगा भगवान?
1: मेरी आज्ञा से तुम त्रिपुर जाओ। पहले वहां की प्रजा और फिर त्रिपुरासुर तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष को अपना शिष्य बनाकर वहां तमोगुण का प्रकाश करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, शीघ्र ही तुम्हारे नास्तिक धर्म का विस्तार होगा।
2: जैसी आज्ञा महाप्रभु।

0: समझ में नहीं आता ये मलिन वस्त्रधारी अल्पभाषी भिक्षुक कौन है, कहां से आए हैं?
1: हाँ मित्र, दीर्घ काल से देख रहे हैं ये शिव भजन गाते इधर उधर विचरण करते रहते हैं।
0: इनका नाम यति है और एक नए धर्म की शिक्षा देते हैं। कहते हैं स्वर्ग और नरक यहीं इसी धरती पर है।
1: परंतु ये तो प्रचलित वेद शिक्षा के विपरीत है। उसमें कहा गया है कि कर्म करने से ही स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं।

0: ले कभी दैत्य लोक में धर्म का इतना प्रचार प्रसार भी तो नहीं हुआ। हम तो धर्म के अधीन हैं। जहां धर्म होगा वहां हम भी होंगे। हम तो इन यति श्रेष्ठ की प्रशंसा सुन इनसे दीक्षा लेने आए हैं।
1: दीक्षा देने वाले दीक्षा लेने आए हैं?
0: नारायण नारायण, बस इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये यति धर्म के नए आयाम निर्धारित कर रहे हैं जिनसे हम भी सहमत हैं।
2: परंतु ये निर्णय कैसे हो कि इन यति मुनियों का धर्म ही सही है अथवा वेदों द्वारा प्रतिष्ठित धर्म?
0: नारायण नारायण, आपके तीनों राजा तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष अति धर्म परायण हैं। ये तो आप स्वीकार करते हैं ना?
1: जी मुने नारद।
0: आइए तो फिर उन्हीं के पास चलकर ये निर्णय लिया जाए।
2: हाँ ये उचित ही रहेगा। वहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित होंगे, शास्त्रार्थ रोचक हो जाएगा।
1: मुने नारद हमें स्वीकार है, त्रिपुरासुर के समक्ष ही चला जाए।
0: नारायण नारायण।
3: ब्रह्म ऋषि नारद के आगमन से त्रिपुर धन्य हुआ धन्य हुआ। मैं तारकाक्ष धन्य हुआ धन्य हुआ।
4: विद्युन्माली का प्रणाम स्वीकार करें मुनि श्रेष्ठ।
3: और कमलाक्ष का भी।
0: त्रिपुरासुर, ये नारद आप धर्म परायण महादैत्यों को भला क्या आशीर्वाद दे सकता है?
5: परंतु अचानक आने का उद्देश्य तो बता सकता है।
0: नारायण नारायण, एक ऋषि द्वारा दूसरे ऋषि का ऐसा कटु स्वागत। नारायण नारायण,
5: एक ऋषि दूसरे ऋषि का स्वागत नहीं कर रहा है नारद, एक दैत्य गुरु अपने दुश्मनों के दूत से प्रश्न कर रहा है। इससे पूर्व आपने कभी दैत्यों को अपना स्वागत करने का अवसर नहीं दिया।
0: आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु, आपने इससे पूर्व हमें कभी यहाँ आने का अवसर प्रदान ही नहीं किया। परंतु अब ये अवसर प्रदान करने वाले आप स्वयं ही हैं।
5: हम समझे नहीं।
0: नारायण नारायण, आज आपकी कृपा से महाप्रभु शिव शंकर की स्तुति से पूरा दैत्य साम्राज्य गूंज रहा है। जहां उनके भक्त होंगे वहां हम ना हो, ये कैसे संभव है?
6: हम धन्य हुए ब्रह्मर्षि। हम न कहते थे दैत्य गुरु, हमारे प्रपौत्रों से सभी देवताओं को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। आज तीनों महाप्रभुओं के दूत नारद आए हैं, कल स्वयं देवाधिदेव हमारे प्रपौत्रों को आशीर्वाद देने आएंगे।
5: दैत्य माता दीदी, आप फिर अहंकार की ओर अग्रसर हो रही हैं। नारद की कूटनीति से आप अवगत नहीं है क्या?
0: नारायण नारायण, क्यों दैत्य गुरु शुक्राचार्य धर्म विस्तार के कार्य में योगदान को आप कूटनीति की संज्ञा क्यों दे रहे हैं?
5: धर्म विस्तार? कैसा धर्म विस्तार?
0: नारायण नारायण, हम तो इन यतियों की शिक्षा से प्रभावित होकर इनसे दीक्षा लेने आए थे। हमें इनका धर्म सर्वोत्तम प्रतीत होता है।
5: यतिवर, अपने धर्म की व्याख्या कीजिए।
7: शुक्राचार्य, हमारा ज्ञान वेदांत का सार है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें कर्ता का कर्म नहीं होता, सब कुछ आप ही प्रकट हो आप ही लीन हो जाता है। आत्मा में ही ईश्वर का वास है, समय आने पर शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है।
5: यदि आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है तो प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे होती है?
7: दैत्य गुरु,
2: किसने देखा स्वर्ग।

0: स्वर्ग कैसा, नरक कैसा? शास्त्रों के अनुसार उनकी प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होती है। कोई है ऐसा जिसने आपको मृत्यु के पश्चात बताया हो कि स्वर्ग ऐसा तथा नरक वैसा?
1: अरे, यति के इस प्रश्न से शुक्राचार्य भी निरुत्तर रह गए।
2: यति कह भी तो ठीक ही रहे हैं,
3: परंतु यति श्रेष्ठ, सभी की मान्यता है कि जहां सुख मिले वो स्वर्ग, जहां दुख भोगने पड़े वही नरक।
0: तो फिर दूसरे लोक में सुख और दुख की तलाश क्यों? यही कर्म करके सुख भोगो, स्वर्ग की प्राप्ति यही हो जाएगी। आनंद ही ब्रह्म है, शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाली वस्तु है। अतः ज्ञानी व्यक्ति को शारीरिक सुख का भोग समय रहते ही कर लेना चाहिए। वेद भी सुख का साधन करने को कहते हैं, सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है।
1: अर्थात यतिवर, सुख के जो भी साधन हैं, उनका जीवन रहते उपयोग कर लेना चाहिए।
0: हाँ, शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का अर्थ ही क्या रह जाएगा?
1: यति ठीक कहते हैं, बुढ़ापा कष्टप्रद होता है, नरक समान होता है।
2: फिर तो पूजा, यज्ञ, तीर्थ आदि अर्थहीन हो जाते हैं। जो समय हम इनमें व्यतीत करते हैं, उस समय में भी हम सुख उठाने का प्रयास करें तो स्वर्ग सुख अधिक भोग सकते हैं।
1: वाह, ये तो बहुत उत्तम युक्ति है सुख उठाने की, अर्थात स्वर्ग प्राप्त करने की।
2: अरे, हम तो व्यर्थ ही प्रभु भक्ति में समय व्यतीत कर रहे थे। यतिवर हमें पहले मिल जाते तो इस समय का सदुपयोग कर लेते।
3: ठहरो मूर्खो, तुम किसके बहकावे में आ रहे हो? ये अवश्य ही देवताओं की कोई कूटनीति है।
1: हम आपकी बात नहीं मानते शुक्राचार्य। कोई भी देवता अपनी भक्ति बंद करवाना नहीं चाहेगा।
2: देवताओं ने तो हमें स्वर्ग प्राप्ति का सरल मार्ग दिखा दिया है। आओ मित्रों, चले आओ आओ, आज से हम यति श्रेष्ठ के दिखाए मार्ग का ही अनुसरण करेंगे।
4: आओ,
5: चलो चलो चलो
4: चलो चलो,
6: नारायण नारायण। चलो नारद, तुम भी चलो, तुम्हारा कार्य भी संपन्न हुआ। नारायण नारायण।

0: नारायण नारायण। परमपिता श्री विष्णु हरे, दैत्य साम्राज्य में धर्म का नाश आरंभ हो गया है, चारों ओर अराजकता का वास है।
1: यह सब तुम्हारे प्रयासों का ही फल है पुत्र नारद।
0: नारायण नारायण। परमपिता ये तो श्री नारायण की लीला है, तीनों दैत्यों की बुद्धि तक कुंठित हो गई है, वे नास्तिक धर्म पर अग्रसर हैं, लक्ष्मी जी तक उन्हें त्याग कर चली गई हैं। नारायण नारायण।
2: और मुने नारद, एक परिणाम ये भी हुआ है कि हम सभी देवताओं की पूजा आराधना भी समाप्त हो गई है।
1: यही है धर्म का महाविनाश।

0: अवतार काक्ष विद्युन्माली तथा कमलाक्ष की शक्ति पूर्णतः क्षीण पड़ जाएगी। उन्होंने देवाधिदेव की उपासना समाप्त कर दी है, वे उनके भक्त नहीं रह गए हैं।
1: नारायण नारायण। अतः त्रिपुरासुर वध अब महाप्रभु के लिए अधर्म नहीं होगा।
2: आइए देवतागण, एक बार पुनः प्रभु शिव शंकर की सेवा में चलते हैं।
1: नारायण नारायण।
3: ये उचित नहीं हो रहा है दैत्य माता, कदापि उचित नहीं हो रहा।
4: क्या अनुचित हो रहा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? इस नए धर्माचरण से हमारी दैत्य प्रजा कितनी सुखी है, कितनी प्रसन्न है। और सच कहें तो हमें भी यही इसी लोक में स्वर्ग का सा अनुभव हो रहा है।
3: अपने क्षणिक सुख के लिए दैत्यों ने अपने दीर्घकालीन स्वप्न त्याग दिए हैं।
4: शुक्राचार्य, हमारी प्रजा हमसे प्रसन्न होकर हमारी जय जयकार करती है। उनकी यह कर्ण भेदी जय जयकार हमारे हृदय को छलनकृत कर देती है।
3: दैत्य माता, इस जय जयकार के पीछे आप मृत्यु का नाद नहीं सुन पा रही हैं।
4: शुक्राचार्य, क्या आपसे दैत्यों का सुख देखा नहीं जाता? आप सदा से ही उनकी प्रसन्नता के मार्ग में अवरोध खड़े करते रहते हैं।
3: हम उनके सुख के मार्ग में नहीं, उनके और उनकी मृत्यु के मार्ग में अवरोध खड़ा करना चाहते हैं।
4: उन्हें इस स्वर्गिक सुख से वंचित करके?
3: हाँ, यदि उनके भविष्य के लिए ऐसा करना उचित है तो उनके गुरु होने के नाते हम यही करना चाहेंगे।
4: चाहेंगे? शुक्राचार्य, आप दैत्य गुरु हैं, वे दैत्य राज हैं, त्रिपुरासुर हैं। होगा वही जो वे चाहेंगे, और वे जीवन के एक एक पल का आनंद भोगना चाहते हैं।
3: जब दैत्यों ने शिवाराधना ही बंद कर दी हो, स्त्री धर्म पूर्णतः नष्ट हो गया हो, चारों ओर दुराचार फैल गया हो, तो जितने पल जीवन के मिले उनका आनंद भोगना ही उत्तम है दैत्य माता। दैत्यों की बार बार होती ये दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। इस बार हम स्वयं अपने पद को त्यागते हैं।
5: और ज्ञानी शौनक जी, दैत्यों को अपनी नियति पर छोड़ शुक्राचार्य वहां से अंतर्धान हो गए। द्विज श्रेष्ठ सूत जी, एक गुरु और कर भी क्या सकता है? कितनी ही बार तो शुक्राचार्य ने दैत्य साम्राज्य का विनाश रोकने के प्रयास किए, हर बार दैत्य माता दिति ने उनके प्रयासों को कुंठित कर दिया।
6: शौनक जी, गुरुत्व की भी एक सीमा होती है। ज्ञानी आत्मसम्मानी गुरु के लिए शिष्यों की क्या कमी रहती है? उन्हें तो एक से एक पराक्रमी दैत्य शिष्य मिलते ही रहे।
5: महाज्ञानी सूत जी, शुक्राचार्य के जाने के पश्चात त्रिपुर स्वामियों तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष का क्या हुआ?
6: दैत्य साम्राज्य में धर्मनाश के पश्चात सभी देवतागण देवादिदेव के पास गए और उनसे इन तीनों दैत्यों के वध का आग्रह किया।
5: महाभाग सूत जी, तो क्या शिव देवताओं की ये प्रार्थना मान गए?
6: शौनक जी, ये जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी, अभी तो विश्राम का समय आ गया है।
5: आप विश्राम करें, मैं पुनः उपस्थित होऊंगा।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक इस वेले शाम के 4:30 हो रहे हैं। तो हम असी तुहानू श्री दरबार साहब अमृतसर लै चलते हैं, जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनु स्वरूप छे एवं जगदवंद्य चरणारविंद थी सुशोभित हे माँ दुर्गा, अमारू आपत्तियों माथी रक्षण करो, रक्षण करो।

मरकत प्रख्या चतुर्भिर् भुजैः शंखं चक्रदनु शरांश्च दधति नेत्रैः स्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगद हार कंकण रणत्कांची क्वण नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुंडला। सिंह ऊपर विराजिला, मस्तक ऊपर चंद्रधारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओथी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोरा थी, अने रणकार करता झांझर थी शोभता, रत्न थी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता हमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश करो।

अर्थात हे महादेवी, तमो धर्मोने उत्पन्न करणारा विधात्री छो, दरेक शास्त्रोनी जननी छो, हे देवी कुबेर थी जेमना चरण कमल नु ध्यान थई रह्यु छे ते दरेक अर्थोनु तमे मूळ छो। हे कामदेवनो पराजय करनारी कृत कंदर्प विजये, दरेक कामो अभिलाषा विलास आदि तमे छो, अने परब्रह्मनी पुत्तराणी प्रकृति सज्जनोनी भक्ति नुगी, हे परमेश्वरी तमो छो। ई दुर्गा देवी ने अपनी प्रणाम करिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।